0: सितंबर 66 के माध्यम से छोड़े गए उपग्रहों में भारत के 3 और अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल हैं। वहीं इसराइल, कजाकिस्तान और
1: يا عبد الرحمن السويحي.